सदगुरु प्रसाद आनंद पाया मेरी माई सतगुरु मैं पाया सतगुर तो पाया सहज सीती मन बजिया बधाइया राग रतन परवार परिया सबद गावण आईया सबदूतां गाव हरी कीरा मन जिनी बसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ई मन मीरिया तू सदा रहो हर नाली

परशाम जह त्रिखा मंत जा करख तहरा निख हर हर अमृत बरख भक्त जनक वर्तन नाम संत जनक मन विश्राम हर का नाम दास कियोट हर के नाम उदरी जनकोट हर जह करत संत धन रात हर हर औखत सत कुमैत हर जनक हर नाम निधान

सदा सदय कुलनहार नानक राखनहार अपार रतन त्याग कौड़ी संग्रचा साक्षूर झूठ संग मचा जो षड ना सो अस्थिर कर मान जो हो वंश दूर पराय।

ब्रह्म ज्ञान का ना हूँ तंदा ब्रह्म ज्ञान के तावत बंधा ब्रह्म ज्ञान का हूँ सो परा ब्रह्म ज्ञान सो फल परा ब्रह्म ज्ञान संग सकल वधा नान ब्रह्म ज्ञान जापा सकल संसार ब्रह्म ज्ञान का इकारंग ब्रह्म ज्ञान का बसा ब्रह्म संग ब्रह्म ज्ञान का नाम आधार ब्रह्म ज्ञान का नाम परवार ब्रह्म ज्ञान सदा सत जागत ब्रह्म ज्ञान अहम बुद्ध त्यागत ब्रह्म

ब्रह्म ज्ञान एक संहिता ब्रह्म ज्ञान का हुए अचंत ब्रह्म ज्ञान का निर्मल बंध ब्रह्म ज्ञान जहकार प्रभा ब्रह्म ज्ञान का बट प्रताप ब्रह्म ज्ञान का दर्श बट भागी पाई है ब्रह्म ज्ञान को बाल बल जाई है ब्रह्म ज्ञान का जह महेश्वर नान ब्रह्म ज्ञान आ परमेश्वर ब्रह्म ज्ञान की क्यों दना ब्रह्म ज्ञान का सकल मन माही ब्रह्म ज्ञान का कौन जाना।

नमस्कार। ब्रह्म ज्ञान सर्वश्रेष्ठ का करता है, ब्रह्म ज्ञान साध जीवा नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञान मुक्त जुगत जिया का दाता, ब्रह्म ज्ञान पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्म ज्ञान आराधकना, ब्रह्म ज्ञान का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञान का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञान अवनिरंकार, ब्रह्म ज्ञान किशोभा, ब्रह्म ज्ञान बनी दान, ब्रह्म ज्ञान सर्व का तन श्रोकुरता रज अंतरनाम सरम पीख भगवान निमख निमख ठाकुर नमस्कार। नानक हुआ परस सकल निहतार अष्टपदी मिथ्या नाहि रसन परस मर्मह प्रीत निरंजन दर्श उपरत्रिय रूपना पीख नेत्र साध गिट हृदय संत संहित करन ना सुना काहु की निंदा सब जाने आवश्यक मंद गुरु प्रसाद विख्या पर हर मन की बाहना मन दे टर इंद्रिय जेत पंच दुख दे रहत नानक कूटमति को ऐसा परस वैष्णो सो जहु परसो प्रसाद विष्णु की माया तिहु भिन्न कर्म करत वै नह करम दह वैष्णो का निर्मल धर्म काहु कर की इच्छा नहि बाछा कीवर भगत कीर्तन संग्रह चय मंतन अंतर सिमरन गोपाल सब प्रोध कृपाल आव दृढ़ावर नाम जु पाव नानक वैष्णु परम गत पाव भगवती भगवंत भगत करंग सकल त्याग दुष्ट का संगमान दिव्य न सकल परम कर पूजा सकल पार।

अपनी मुड़ी आगे नान सब में रहे हो समय प्रभु पावे मानो कहा तो पावे प्रभु पावे तो पावे थर तरावे प्रभु पावे बिन सास जरा के प्रभु पावे तो हर गुण पाक है प्रभु पावे तो पतति उधर है आप करे अपन विचार है दूह श्रेय का स्वामी खील है विकसे अंतर जा।

संत का दुख न मरा न जीवाई है। संत के दुख की पूजा न आसा, संत का दुख उठ चला न रासा, संत का दुख न दृष्टा कोई जहाँ पावे दसा, कोई हुए पाया कर दना बेटा, कोई नानक जाना सचा, सुय सब घट दुष की करने वारू, सदा सदा दुख नमस्कार प्राप्त की।

का सेवक सोवड़ पाएगी, जन का संग इकले बिलाएगी, गुण गोविंद कीर्तन जन गावे, गुरु प्रसाद नानक फल पावे, श्लोक आद सच जुगाद सच है पिय सच, नानक होसी पिय सच, अष्टपदी चरण सत सत प्रसन्न और पूजा।

तिसके शरण सर सुख पाय वहंत दरस सब पाय मेटावे और से अनु सगरी शाठ दिस जन की दूसरी वाला गया वंजा न हुई तेरा नानु दिस जन के पूजा हो साधु पैरा श्लोक साधु पुरख जन जानिया साधु गुरु तह का नाम तुसका संग से खुद रह नानक हर गुण गावष्टपति साधु गुरु सिख की करा प्रद पायल सेव कव गुरु सदा दयाल सिख की गुरु दुर्मत माल हर गुरु वचन हर नाम उचर साधगुरु सिख बंधन काट गुरु का सिख विकार त्याट सतगुरु सिख का नाम दान दे गुरु का सिख उठ पाएगी ही साधगुरु सिख का हलत बल्द सवार नानक साधगुरु सिख का जी अनाल सुमार गुरु का गृह सेव को जा रहा है गुरु की आगमन महसा है आप उसका कर का शना जनाब हर हर नाम रुद सत्य आवे मन बीच सतगुरु का पास ते सेवक की कार्य रा सेवा कर दो निह कामी दस कहोत प्रा स्वामी अपनी कृपा जसाव करी नानक सो सेव गुरु की मातली भी सुबह सुबह गुरु का मन मान सो सेवक परमेश्वर की गात जान सो सतगुरु जस

निरपौ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सहभंग प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच न होवई जे सोची लख वार चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया भार सहस सियाणपां लख हो है तां इक न चलै नाल किव सचियारा होइऐ किव कूड़ै तुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वडियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है इक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाई है हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म न कोए नानक हुक्मै जे बुझै ता हुमै कहै न कोए गावै को ताण होवै किसै ताण गावै को दात जाणै निशान गावै को गुण वडियाइयां चार गावै को विद्या विखम विचार गावै को साज करे तन खेह गावै को जी लै फिर देह गावै को जापै दिसै दूर गावै को वेखै हादरा हदूर कथना कथी ना आवै तोट कथ कथ कथी कोटी कोट कोट देदा दे लैंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे हुक्मे हुक्म चलाए राहो नानक बिगसै वे परवाहो साचा साहिब साच नाए भाख्या भाओ अपार आख है मंगह देहे देहे दात करे दातार फेर कै अगै रखीऐ जित दिसै दरबार मुहाओ कै बोलन बोलीऐ जित सुन धरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक एवै जाणियै सब आपे सचियार आप्या ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गाविय गुणी निदान गाविय सुनिय मन रखिय भाओ दुख पर हर सुख कर लै जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहया समाई गुर ईसर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई जेहो जाना आखा नाही कहना कथन ना जाई गुरा एक देह बुझाई सपना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीरथ नावा जे तिस भावा विण पाणे कै नाय करी जेती सिठ उपाई वेखा विण करमा कै मिलै लई मत विच रतन जवाहर माणक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सपना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जाणियै नाल चलै सब कोए चंगा नाओ रखाए कै जस कीरत जग ले जे तिस नदर ना आवई ता वात ना पुछै के कीटा अंदर कीट कर दोसी दोस धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोए न सुजई जे तिस गुण कोए करे सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ सुनिया धरत धवल आकाश सुनिया दीप लो पाताल सुनिया पुहै न सकै काल नानक भगता सदा विगास सुनिया दूख पाप का नास सुनिया ईसर बर्मा इंद सुनिया मुक्सा लाहण मंद सुनिया जोग जुगत तन भेद सुनिया सास्त सिमृत वेद नानक भगता सदा विगास सुनिया दूख पाप का नास सुनिया सत संतोख ज्ञान सुनिया अठ सठ का इसनान सुनिया पढ़ पढ़ पावह मान सुनिया लागै सहज ध्यान नानक भगता सदा विगास सुनिया दूख पाप का नास सुनिया सरा गुणा के गाह सुनिया सेख पीर पातशाह सुनिया अंधे पावह राह सुनिया हाथ होवै असगाह नानक भगता सदा विगास सुनिया दूख पाप का नास मन्ने की गत कही ना जाए जे को कहै पिछै पछताए कागद कलम न लिखण हार मन्ने का बह करन विचार
ऐसा नाम निरंजन होए। जे को मन जाने मन कोए, मन्नै सुरत होवै मन बुद्ध, मन्नै सगल भवन की सुध, मन्नै मोहे चोटा ना खाए, मन्नै जम कै साथ न जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्नै मार्ग ठाक ना पाए, मन्नै पास्यो प्रगट जाए, मन्नै मग ना चलै पंथ, मन्नै धर्म सेती संबंध। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्नै पावह मोख द्वार, मन्नै परवारै साधार, मन्नै तरै तारे गुरसिख, मन्नै नानक पवह न भिख। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, पंच प्रवान पंच प्रधान, पंचे पावह दरगह मान, पंचे सो है दर राजान, पंचा का गुर एक ध्यान। जे को कह करै विचार, करते कह करणै नाहीं सुमार, धौल धर्म दया का पूत, संतोख था प्रख्या जिन सूत। जे को बुझै होवै सच्यार, तबलै उपर केता पार, धरती होर परै होर होर, तिस्ते भार तलै कवन जोर। जी जात रंगा के नाव, सबना लिखिया बुड़ी कलाम, एहो लेखा लिख जाने कोए, लेखा लिखिया खेता होए। केता तान स्वल हो रूप, केती दात जाने कौन कूत, कीता पसाओ एको कवाओ, तिस्ते होए लख दरियाओ। कुदरत कवन कहा विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तप ताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रह है उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह भख सार, असंख मौन लिव लाए तार। कुदरत कवन कहा विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूरख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहै जोर, असंख गल वड हत्या कमा है, असंख पापी पाप कर जा है, असंख कूड़ियार कूड़े फिरा है, असंख मलेश मल भख खा है, असंख निंदक सिर करह भार, नानक नीच कह विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कह है सिर भार होए, अखरी नाम अखरी सालाह, अखरी ज्ञान गीत गुण गाह, अखरी लिखण बोलण बाण, अखरा सिर संजोग वखाण। जिन एह लिखे ते सिर नाहे, जे फरमाए तिव तिव पाहे, जेता कीता तेता नाओ, बिन नावै नाही को थाओ। कुदरत कवन कहा विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। भरिए हाथ पैर तन देह, पानी धोतै उत्र सुखेह, मूत पलीती कपड़ होए, दे साबून लइए ओह धोए। भरिए मत पापा कै संग, ओह धोपै नावै कै रंग, पुन्नी पापी आखण नाहे, कर करना लिख।

पाहन अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह पिव। आप अपनी बुध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तुहे तेती तुमरा लखा न जाय पसारा कह विद सजा प्रथम संसारा। एकै रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही भूपा अंडज जेरज सेतज कीनी उतभुज खान बहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा हुए बैठा कहूँ सिमट भयो संकर कैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचम भव आद जुगाद स्वरूप संयम भव। अवरक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवते उत्पाता सकल मलेश करो रण काता। जे अस्तुज तव सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हुए मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याय हैं ताके काल निकट नह आए हैं रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो ताके ताप तनक मह हर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह श्वै सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दुख ते रहा। खड़ग केत मैं सरण तिहारी आप हाथ दै लिहो बारी सर्ब ठौर मो हो सहाई दुष्ट दुख ते लिहो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूरण शुभ राता किल बिख सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को शय करता। श्री अस्तुज जब भय दयाला पूरण करा ग्रंथ तत्काला मन बांछत फल पावै सोई दुख न तिसै व्यापत कोई। अडिल सुनै गुंग जो याहै सो रसना पावई सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवई। दुख दर्द पाओ निकना तिन नर के रहै हो जो या की एक बार चौपई को कहै चौपई। संबत सत्रह सहस फणिजै अर्ध सहस फुण तीन कहिजै भाद्रव सुधी अष्टमी रविवारा तीर स्तुद्रव ग्रंथ सुधारा सोइया। पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सबै बहुभेद कहें हम एक न जान्यो। श्री अस्पाण कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तो है बखान्यो दोहरा।

0: ने चल था वडी वडे आई जाने आलाओ
1: बड़े बड़े आए मोजे सबाओ बड़े बड़े आए मोजे सबाओ
0: वडी वडे आई जा पूछ ना दा।

महाराज कृपा करके दसो भी सिख का किहो जिहा जीवन होना चाहिए। तो कलगी वाले पातशाह फिर रहतनामे च उहदा जवाब देंदे हन, नंद लाले बचन सुणा

मंत्र सो जाप कर इशनान पढ़े जप जाप संध्या समय सुने रे रास कीर्तन कथा सुने हर यास वाहे गुरु नित बचन उचारे वाहे गुरु को हृदय तारे। जेड़ा गुरु का सिखा ना ओदे मुख विचों हर टाइम वाहे गुरु दा सिमरन ही निकलता रहे। तुसी भागां वाले जे मैं सवेर दा नित नित हुंदा वेख्या पहले सुखमनी साहब का जाप 3 बजे आरंभ हो जाता। उस तो बाद गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश हुक्मनामा फिर 5 बाणियां का नितनेम वो संगत किड्डे उच्चे परिक्रमा वाली जिहड़ियां फिर आके घंटा सिमरन में अपने नाम मन में जोड़ दियाँ। गुरु के सिखो जे इन्ना नितनेम सब गुरद्वारे जो जेन ते कले कले सारे मुक जान और हर सिख का इन्ना नितनेम जरूरी होना चाहिए जे इस रूह की रूह नू जिउंदिया रखना। गुरु कृपा करे आओ मैं तुहाडी सेवा विच जिहड़ा मैनू हुक्म किया 6वें पातशाह महाराज की याद में जुड़ बैठे हाँ। धन बाबा बुढ़ा साहब ब्रह्म ज्ञानी उन्हों की मिठी याद में संगतां बड़े दिनों तो यह गुरमत समागम मना रही। आओ मैं यो प्रकरण तुहाडे सामने शुरू कर लगा। धन गुरु रामदास महाराज के 3 पुत्र सन वड्डे बाबा पृथ्वी चंद जी उस तो छोटे महादेव उस तो छोटे श्री अर्जन जी जेड़ा वड्डा पुत्र सी महाराज का उहदे घरवाली का नाम सी बीबी करमो उहदा 1 पुत्र सी जिहदा नाम इतिहास विच मेहरबान आया। गुरु अर्जन साहब महाराज की शादी जिला जलंधर पिंड माओ विखे माता गंगा जी ना हुई ते 15 वरे बीत चुके 15 वरे पर घर विच कोई संतान नहीं। एक दिन माता गंगा जी ने कीमती दिशाले कीमती रुमाले बड़े बड़े सुंदर सूट जदों चमासे दे दिन निकलते हैं ना फिर माइया कपड़िया का सलाबा खत्म कर दिया धुप च सुका के माता गंगा जी ने कीमती दिशाले कोठे ते पाए सी। इन्हां दिशालियां ते नज़र पई गोली दी करमो दी गोली दी ते करमो ने जाके इन्हें दस्या भी तेरी दराणी ने किड़े किड़े सोहने सूट ते किड़े किड़े सोहने दिशाले कोठे ते सुकने पाए। आते जदों उन्हें चढ़ के आके वेख्या ना फिर उन्हें इन्ना सहीसा होया भी उन्हें फड़ के लाना पिया। एक मैली जी चादर लैके टुट्टी जी मंजी ते पै गई। बाहरों पृथ्वी चंद आया ते आंदा करमो तेरे चेहरे ते निराशता क्यों आ। आंदी जे तू अपने पिता का कहना मान लीनो ते जेड़ियां चीजा मेरी दराणी सांभ सांभ के रख रही आ इन्हां चीजा की मालक मैं होना सी। पृथ्वी चंद ने आख्या करमो तू कमली आ गंगा ने जग तो औंतरी जाना इहदे घर विच कोई संतान नहीं होनी जेड़ा 6वां गुरु गद्दी ते बहना ना वो अपना पुत्र मेहरबान बहना गंगा ने जग तो इस तरह जाना करमो नू तरवासा देन वास्ते पृथ्वी चंद जो उन्हू बोल कह रहा उन्होंने बोलों तो सामने जोड़ी बैंत छांद बयान कर रहे भाई।

तुमरे ग्रह प्रकटे गोजोदा जाका बल बुद किनू न सोदा। माता जी तुहाडे घर विच एहो जिहा मां बली पुत्र पैदा होएगा जेदा बल मापिया।

बोरिया इसको आ पाए तनक ना देर लगायो। आप कुत्ते वास्ते एक भांडा घर रखते ना, जे तो लस्सी तो दही पाने, मारने वाले वास्ते एक भांडा रखा सी, जहर वाला दही जो कुत्ते दे भांडे च पाया तो मारने कूकर नू आवाज मारी, आख्या भी कूकरा ये दही छक जा। जदों कुत्ते ने वो दही सूंघिया ना, सिखो उन्हें कन्न फरकते, उहदे अखां विचों जार जार नीर जाण लगा। कुत्ते दी एक हैबिट हुंदी है, जिस तरह बंदा ज्ञान विच स्वतंत्र है ना, केड़ी चीज खानी केड़ी छड़नी केड़ी चंगी केड़ी माड़ी आ, जिहड़ा जानवर आ उहनू प्रकिरतक वल्लों ज्ञान है। तुसीं भंग दा बाग ला दिओ, उहदे विच गावां मझां बकरियां छड़ दिओ, उह कदे भंग नहीं खाणगे। तुसीं बांदर दे गाली यार पा दिओ, बांदर कदी भी यार नहीं खाऊगा। इस तरह कुत्ते दी भी कहावत है, जदों कुत्ते ने सूंघिया दही उहने कन्न फड़कते, महाराज ये जे दही मैं खा लिया तो मैं तो मिनट भी नहीं जीवना। सतगुरु कहन लगे तू साडा वचन मन के इस ब्राह्मण का पाप यार कर, असी तेनू नरकां च नहीं जान देंगे, तेनू चरणा च रखांगे। तो कूकर ने गुरु अर्जन साहब का वचन मन के वह जदों दही खादा जहर वाला, इधर कुत्ता तड़फन लग पिया, तो इतिहास चाहता है कि उधर ब्राह्मण नू सूल छिड़ गया, तो ब्राह्मण तड़फ के मरन लगा। दुष्ट ब्राह्मण मुआ होए के सूले, बाणी का वाक है, सूल हो के ब्राह्मण मरन लगा। तो पुछया गुरु अर्जन साहब ने की कीता जी ब्राह्मणा, महाराज मेरा कोई कसूर नहीं, मैं थोड़ा लालच आ गया, तुहाडे पिरथीए भरा ने मैनू यह लालच दिता सी, सतगुरु पातशाह ने पिरथी चांदू बुलाया, वो भरावा जे कोई लेना सी जे कोई वंडना सी साढ़े ना वंडल कर लो, वो बाल कुत्ते एडा वड्डा वार करना, ये चिट्टी चादर नू दाग लाउण वाली गल है, पिरथीए नू शर्मिंदा होना पाया। कई बार गुरु अर्जन साहब ते गुरु हरगोबिंद साहब ते कीते, पर पातशाह नवें नरोए रहे, उन्हां दी अकाल पुरख ने रख्या कीती। सतगुरु कृपा करे, आप जी बड़े श्रद्धा ते भावना दे नाल बह के गुरु का प्रसंग श्रवण कीता। आखिरी कविता तुहाडी सेवा च, साडे सैकटरी साहब वो पहलों ही मान दे गया, एक $100 सरदार चरणजीत सिंह जी। एक मेरा सज्जन सी, तो मैनू कहिंदा ज्ञानी जी मैं तुहानू 100 रुपया दया करूँगा, तो मेरा नाँ लै दया करियो। मैं क्या भी ना लैन नू के ना तेरा लै देंगे 100 रुपया नहीं। आंदा इदा करो बाहर आ के ना मैनू 90 मोड़ दया करो। मैं क्या भी वह क्यों? आंदा भी मोर 100 थोड़ा। तो मैं क्या भी सानू की फायदा होगा? आंदो तुहानू फायदा होगी जो मैं दूंगा, चिड़ चिड़ के होर भी देंगे। मैं क्या भी ये सौदा सानू नहीं मारा खाना, सानू 10 ही दे इन्ने बड़े आ, तो ये 100 दे के लेंदे नहीं बाहर जाके। गुरु कृपा करे, बहुत माण करदे साडा, सतगुरु कृपा करे। जे मैं ना कोई बुलारा 10-20 मिनट लेट ही हो जाए ना, तो स्टेज सुंझनी रही। गुरु कृपा करे, मेरे वीर जिन्होंने प्यार भरिया सदा भेजा, हाँ जी साजन सिंह जी, ना भी साजन तो सेवा भी बड़ी करता, माया की सेवा तो उन्हें खुली करनी करनी, साड़ी उतना ही सेवा करके गया। सवेरे मैं ना फुल वर्गा हौला शरीर करता, मैं ना जड़िया बीमारियाँ दवाइया खा के ना खेड़ा छड़ दियाँ, मैंने जो अद्धा घंटा लवा लिए ना तो ऐन सही टली कर दे। गुरु कृपा करे, तो सानू तिना प्यो पुता सवेरे पूरा इन्हें रिलैक्स किया। मैं वीर का धन्यवाद करदा, गुरु कृपा करे। आओ तुहाडे सामने 20वीं सदी के महान योधे, सिख नौजवानों के दिलों की धड़कन, संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरांवाले। मैं उन्होंने नौजवानों दर्शन किए हैं, वो जिधर नंघ जा करते सी, नीलिया पीलिया दस्तारा सिंह के सिरा ते सोभदियां सी, उन्होंने एक हुक्म तो सिख खून के खाल बगा दिया करते सी। 3 लाख नौजवान गभरू की लिस्ट संत बाबा जरनैल सिंह के हाथ में सी, जेड़े अपने हकों की खातर ऐ जाना तली ते रखी बैठे सी। अज पुत प्यो दे आखे नहीं लगता उन्हों का किन्ना उच्चा सुचा जीवन सी। तुहाडे सामने जोड़ी बयान कर रही है कवि अमरजीत सवरान,
ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਤੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਕਾਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ, ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਕਸ਼ਾ, ਉਹਦੀ ਕਲਮ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚਿਆ, ਜਰਾ ਸੁਣੀਏ ਬਾਈ।